0: ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਖਾਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕੋਲਸ ਮਦੂਰੋ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਫੜਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਉਪਰੰਤ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 5000 ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਇਰਾਨ ਨੇ 5000 ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭਈ ਇਹ ਵਿਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੂ ਐਸ ਆਰਮਾਡਾ ਇਰਾਨ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆ।
1: ਅੱਛਾ ਜੀ,
0: ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਪ ਸੀਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਇਓ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਮਾਡਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੌਂਗ ਲਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਾਲੇ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਪਰ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਉਹ 5000 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਆ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਬਕੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਰਾਨ ਨੇ 800 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਪਤਾ ਨੀ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਆ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖੱਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਇਰਾਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਟਰੰਪ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਭਾਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਅਰਫੋਰਸ 1 ਦੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੈਵੋਸ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਉਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਖੱਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹੁਣ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵੱਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸੰਡੇ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਖੱਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕਸ਼ੇ ਕਹਾਂਗੇ ਮੌਨਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੱਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰਾਕਸ਼ ਸਮਝਿਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਖੱਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ।
1: ਅੱਛਾ ਜੀ,
0: ਤੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੱਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਏਦਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਜਾ ਆ ਉਹ ਡਰ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਏਦਾਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੋਇਲਟ ਦੀ ਫਲੱਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਟੀਐਮ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ
1: ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਨਰੇਟਰ ਬੈਕ
0: ਜਨਰੇਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ
1: ਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਆ ਜਾਂ ਕੇ ਮਾਰਟ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਟੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਚਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਟਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਫਾਨੀ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਖਾਕਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਚ ਜਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਚ ਖਾਕਸਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਨੋਅ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ
1: ਘੰਟੇ ਬੜੀ ਸਨੋਅ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਇੰਨੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ ਜਾਂ ਸਨੋਅ ਖੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਯੂਟਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਯਾ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ, ਉਥੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈ ਖਾਕਸਾ ਜੀ 12-12 ਫੁੱਟ ਤਿੱਕਰ ਸਨੋਅ ਚੜ੍ਹਦੀ ਦੇਖੀ ਆ, 12 ਫੁੱਟ
1: ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲ
0: ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 10 ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਪਈ ਇੱਥੇ ਘਰ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਖਾਕਸਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਤਿੱਕਰ ਪਗੜਦੀ ਆ ਪੂਰੀ।
1: ਸੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੈਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੋ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਸਨੋ ਮੂਵ ਵਾਲੀ
0: ਕੱਢ
1: ਕੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੂਣ ਲਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬੀਕੇ ਬੁਲਚੇ ਸ਼ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ
1: ਸਾਰੇ
0: ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਆਹ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ 230 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਰੌਕੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਪਲੇਨਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਨੀ ਮਤਲਬ ਖਾਕਸਾ ਵੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਹੀ US ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤਿੱਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਾਤਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਪਾ ਲੋ।
1: ਇਹ ਨੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਡ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਲੋੜ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨੀ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ATM ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਧੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇਬਾਂ ਚ ਪਾ ਲਓ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ।
1: ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖਤਰਾ ਖਾਕਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ, ਟੈਕਸਾਸ, ਲੂਈਜ਼ੀਆਨਾ, ਮਿਸੀਸਿਪੀ, ਅਲਾਬਾਮਾ, ਜੋਰਜੀਆ, ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਉੱਪਰਲਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮਿਜ਼ੂਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਟੈਨਸੀ, ਵਰਜੀਨੀਆ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਆਰਕਾਂਸਸ, ਕੈਂਸਸ ਤੇ ਕੈਂਟਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ।
1: ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੜੇਗਾ ਜੀ?
0: ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਸਨੋਅ ਪਊਗੀ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਨੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਨੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਸਨੋਅ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਦਮ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਨੋਅ ਪਗੜਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੇਰੀ ਜਿਆਦਾ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੱਲੀ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ
1: ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਨੋ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਸੈਂਡੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸੈਂਡੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੰਦਰਾਂ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, 15 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਨਿਊ ਜਰਜੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿਚ ਗੈਸ ਪੰਪ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਗੈਸ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੇ ਪੰਪ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਟੈਂਕਰ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ 15-20 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਰਫੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ,
0: ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸਟੋਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਹਵਾ ਨੇਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ,
1: ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਸੈਂਡੀ
0: ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਦੋਨੀ ਜੇਲ ਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ
1: ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਰੇਗਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਲੋ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ
0: ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਮਾਰੂੰਗਾ
1: ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ।
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ
1: ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਉਹ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਥੋੜੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ,
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੀ, ਕਰੀਬੀਅਨ ਜਿੱਧਰ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਧਰ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੋਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਆ ਚਾਹੇ ਦੂਜੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਰੋਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਸੀਗੀ,
1: ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੜਾ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜੀ ਰਸਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਯੂਰਪ ਨੇ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਜਤਮਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਚ।
0: ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਆ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿਚ।
1: ਹਾਂਜੀ,
0: ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਚ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟ ਆ, ਪਤਾ ਨੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਚੀਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਆ
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਚੀਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅਫਸਰ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਲਿਸ ਕੈਨਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ, ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸੀ ਇਹ ਦਾਤਰਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੋਲਿਆ ਵੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਾਤਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲਦੀਆਂ
1: ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਆਦਾ ਜਿਆਦਾ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਉਧਰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਆਏ ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ,
0: ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ
1: ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਬੁਬਲੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਐਵੇਂ ਬੁਬਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰਾਈਓ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਨੁਭਵ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਥੋਂ ਆ ਕੇ ਡੇਵੋਸ ਸਵਿਟਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਵਾਂ।
1: ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਜਾਏ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ।
0: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਨਿਯਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਯਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਰਨੀ ਜਿਸ ਨਿਯਮ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ। WTO ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, UN ਅਤੇ COP ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ, ਆਰਥਿਕ ਜੁੜਾਅ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ, ਵਪਾਰ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਊਰਜਾ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜ
1: ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਉਧਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਚਲੇ ਕਟਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਜੀ,
0: ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ?
1: ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ ਨੀ ਮਿਲਦਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨੀ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨੀ ਆਈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰੋ,
0: ਰੈਗੂਲਰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਾਂ?
1: ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ।
0: ਓਕੇ
1: ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਟਨ
2: ਲੇਟਰ
1: ਜੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ?
0: ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ,
1: ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ।
2: ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ
1: ਮੈਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ।
2: ਓਕੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
1: ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
2: ਸੋ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਰੇਡੀਓ ਸਬਰੰਗ, ਯੂਟਿਊਬ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਮੁਝੇ ਦੇਖਨੇ ਔਰ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਸ੍ਰੋਤਾਓਂ ਕੋ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੂੰ ਆਪਕਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾ ਸ਼ੋ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਔਰ ਜੈਸੇ ਆਪ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਮ ਤੀਨ ਭਾਸ਼ਾਓਂ ਮੇਂ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇਂ ਯੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁਕਾ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁਕਾ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਕੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਹਿੰਦੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੋਂ ਮੇਂ ਮੈਨੇ ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੀ ਥੀ, ਜੈਸੇ ਹੀ ਸੈੱਲ ਕੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਥੀ ਔਰ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹਮਨੇ ਕੀ ਥੀ, ਸੈੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਾ ਜੋ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸਕੀ ਬਾਤ ਹਮਨੇ ਕੀ ਥੀ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਥੀ, ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਮੇਂ ਆਪ ਸਭ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਕਿ ਸਭਸੇ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਮੈਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮੇਂ ਉਸਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੋ ਹਮਾਰਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਵੋ ਹਮਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਹਮ ਆਪਣੇ ਲੌਕ ਰੂਮ ਮੇਂ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਤੇ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ੇ ਰੱਖਤੇ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਰੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕੋ ਸੰਭਾਲਨੇ ਕੇ ਲਈ ਜੋ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਵੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੀ ਕੀ ਵਜਹ ਸੇ ਹਮਾਰਾ ਕੱਦ ਕਾਠ, ਹਮਾਰਾ ਰੰਗ, ਹਮਾਰੀ ਆਂਖੋਂ ਕਾ ਰੰਗ, ਯੇ ਸਭ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੋ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੀ, ਇਸੀ ਲਈ ਅਗਰ ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆਤੀ ਹੈ ਤੋ ਹਮਨੇ ਯੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਜਾਤੀ ਹੈ ਯਾ ਗਰੋਥ ਆਗੇ ਪੀਛੇ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੇਂ ਅੰਤਰ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਹਮਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ੇ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸੈੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਘੂਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਭੀ ਨਾ ਕਭੀ ਅਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜਤੀ ਤੋ ਘਰ ਕੇ ਸਮਾਨ ਕੋ ਵੀ ਹਮ ਕਭੀ ਅਲਗ ਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਸਕਰੂ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਉਸਕਾ ਕਾਮ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲਈ ਹਮ ਕਿਸੀ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੇਤੇ, ਠੀਕ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ੇ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਸੈੱਲ ਮੇਂ ਘੂਮ ਰਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਨਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਕਾ ਕਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜ ਗਈ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ, ਉਸਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਕਾ ਕਾਮ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤੇ ਮੈਨੇ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕੀ ਥੀ, ਔਰ ਐਜ ਏ ਹੋਲ ਇਸਕਾ ਇੱਕ ਟਰਮ ਮੈਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਆ ਥਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਾ, ਔਰ ਯੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕੋ ਪੂਰੇ ਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਸੀ ਸੇ ਗਰੋਥ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਉਸੀ ਸੇ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਉਸੀ ਸੇ ਹੀ ਜੋ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ, ਹਮਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਲ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੋ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸਕੋ ਬਣਾ ਕਰ ਉਸੀ ਤਰੀਕੇ ਕਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾ ਦਿਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਮਨੇ ਚਲਾ ਦਿਆ, ਰੇਲੇ ਤੇ ਪੀਟਰ ਇੰਜਨ ਰੱਖ ਦਿਆ ਔਰ ਹਮਨੇ ਗਾੜੀ ਬਣਾ ਦੀ, ਤੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸਕੋ ਜੁਗਾੜ ਹਮ ਬੋਲਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਾਮ ਜੁਗਾੜ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, हर आदमी ऑरेंज ले रहा है, हर आदमी जितनी चीजें हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट है वो सभी हमारी खुराक में तो नहीं ना होती, तो एक एक चीज से अलग अलग चीजें सिंथेसाइज होती है, बनती है, और वो जो बनाने का काम है वो सारा इस न्यूक्लियस का है कि किसी चीज से कोई और बना देना है। हमारे पास विटामिन के नहीं है तो विटामिन सी से आगे सिंथेसाइज कर देना, वही काम जो विटामिन के को करना है वही काम विटामिन सी से ले लेना। इसी तरह ही कैल्शियम है और अलग अलग चीजों से सिंथेसाइज कर देना, उसको बनाने का जो काम है वो भी इस न्यूक्लियस का ही होता है हमारे शरीर में। और अगर न्यूक्लियस काम ना करे तो फिर जितनी भी कमी पेशी हमारी खुराक में रह जाती है ना, वो पूरी की पूरी बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने आ जाती है कि आयरन कम है तो आंखें पीली हो जाएंगी, नाखून पीले हो जाएंगे, लाल नहीं रहेंगे, चेहरा पीला हो जाएगा, इस तरह की कंडीशन हमारे सामने आनी शुरू हो जाएगी। कैल्शियम अगर कम है तो किसी और चीज से तो सिंथेसाइज हो नहीं रहा क्योंकि न्यूक्लियस पूरा काम नहीं कर रहा, नहीं सिंथेसाइज हो रहा तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। स्टार्टिंग में जब हम टीथिंग की बात कर रहे तो मैंने ये आपको बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि कैल्शियम कहीं से ज्यादा ले लिया जाता है, खुराक में अब उतना आ नहीं रहा, दूध ही देना है बच्चे को, दूध में पूरा कैल्शियम पूरा हो नहीं रहा, तो फिर क्या है कुदरत आंतड़ियों से कैल्शियम निकाल देती। अगर वो आंतड़ियों से कैल्शियम निकाल के दांत बनाना शुरू कर देगी तो फिर आंतड़ियां कमजोर हो जाएंगी, बच्चे को टट्टियां लग जाएंगी, डायरिया हो जाएगा। इसी तरह ही अगर उसने कहा कि नहीं आंतड़ियों में भी इतना है नहीं तो फिर वो हड्डियों से निकालेगी, जो हड्डियों से निकालेगी तो दांत तो बनाना ही है, आगे काम तो चलना ही है, जो नई रेलवे लाइन बिछानी हो तो बिछानी ही है, तो अल्टीमेट हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। जो बच्चा अभी चलने लगा था, जो बच्चा अभी टेबल के साथ स्टैंड खड़ा हो जाता था, अब वो नहीं होगा। तो मतलब ये एग्जांपल्स मैं आपके सामने सेट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ये जो न्यूक्लियस है असल में इसका काम क्या है। तो ये सभी चीजें जो शरीर में हमारी खुराक के जरिए नहीं जा रही लेकिन उनकी जरूरत है, और उनकी जरूरत को पूरा कैसे किया जाए, टू सिंथेसाइज, किसी न किसी और चीज का जुगाड़ बनाकर उन चीजों का इस्तेमाल उसमें किया जाता है, उसकी पूर्ति की जाती है। और ये सब काम जो है इसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, और ये सब काम जो है ये हमारे इस न्यूक्लियस का, ये बात हमने आप सब लोगों को बता दी थी। और बड़ी बात मैंने बताई थी कि डीएनए इसमें होता है, डिसऑक्सीराइड न्यूक्लियोटाइड होता है जो हमारा कैरेक्टर को प्रिजर्व करता है, और इसकी भी डिटेल मैंने आप सब लोगों को बताई थी कि जब माँ और बाप के स्पर्म और ओवम मिलते थे तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, एक एक क्रोमोसोम में सैकड़ों ही जीन्स थे और हर एक जीन्स का अपना ही करेक्टर था, वो अपनी ही खासियत थी उसमें, और जैसे जैसे सेल की डिवीजन होती है वो पूरा बराबर बांटा जाता है ताकि जितने भी सिबलिंग्स हों, बहन भाई हों, उन सब में पूरी तरह उस तरह माँ बाप का करेक्टर आए, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। कुछ गुण, कुछ बच्चे बहुत शरीफ होते हैं, कुछ बच्चे बहुत शरारती नौटी हो जाते, कुछ वो उस पर डिपेंड करता है कि वो जो जीन्स इसमें ट्रांसमिट हुए हैं वो जीन दूसरे में उतने ट्रांसमिट नहीं हुए हैं, क्योंकि हर एक जीन्स का अपना अपना करेक्टर है। एक एक बच्चे का कद लंबा हो गया, एक बच्चे का कद छोटा रह गया, तो किस बात का ये है कि वो जो जीन्स हैं उसमें क्रोमोसोम्स में जो जीन्स हैं, हर एक जीन्स के ऊपर जो प्रोटीन की कोडिंग होती, जैसे आप बाजार में सामान लेकर आते हैं ना तो वो चक्री सी बनी होती है लाइनों की, वो उसमें उसको स्कैन करते हैं तो पता हो इसकी इतनी कीमत है, इसकी इतनी कीमत है, ठीक इसी तरह का पूरा ढांचा जो है ये हमारे इस न्यूक्लियस में होता है। तो ये बात मैंने आप सब लोगों को बताई, इसके अंदर का जो फ्लूइड है, जितनी भी चीजें इसमें तैर रही होती हैं या जितनी भी चीजें इसमें प्रिजर्व रहती हैं आगे रिकॉर्ड के लिए या आगे पेश करने के लिए या आगे डिवीजन करने के लिए या ट्रांसमिट आने वाली जनरेशन को देने के लिए, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और इस प्रोटोप्लाज्म का भी काम वही जैसे साइटोप्लाज्म का था, एक अलग ही एनवायरमेंट है, एक अलग ही तरह का माहौल है, जेली लाइक ये होता है और इसी में वो सब चीजें तैरती रहती हैं। अगर ये खराब हो गया तो वो पूरी चीज खराब हो जाती है। इसी तरह ही हमने इसका मेन फंक्शन जो आपको बताया था कि एक तरह का स्टोर हाउस है, जितना भी रिकॉर्ड है हमारी पुराने फोर फादर्स का, उस सब को रिकॉर्ड करके प्रिजर्व करके रखा होता है, और जैसे ही आगे नई जनरेशन बनती है तो इसकी जो डिवीजन है वो इस तरह होती है कि सभी चीजें दोनों आगे आने वाली जनरेशन को बराबर ट्रांसमिट हो, बराबर डिवीजन उसमें हो। अब जो बराबर डिवीजन होगी तो आगे आने वाला चैप्टर वही आज मैं आपको बताऊंगा कि डिवीजन की जिम्मेवारी फिर किसकी है। इसमें तो समान है, इसने तो कहा कि मेरे पास इतना गहना है, इतना डीएनए है, इतने जीन्स हैं, ये सब ले लो भाई, इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड कौन करेगा, इसकी बात आज हम इस प्रोग्राम में आपसे करेंगे। और अगर वो डिफेक्ट हो गया तो बेशक बाप ने तो कह दिया कि मेरे पास इतने एकड़ जमीन है, इसको भाई बांट लो, और जो बांटने वाला है वो कहेगा किसी को ज्यादा रेतली जमीन दे दी, किसी को रोही भी की दे दी थी, किसी को पूरी जो है न्याय की जमीन दे दी, फर्क पड़ जाएगा, है ना। सो ये बांटने वाले के ऊपर आएगा। अब हमने ये कह दिया कि ये जो न्यूक्लियस है ये पूरे का पूरा रिकॉर्ड उसके पास रखता है कि इसके पास क्या क्या है, और वो पूरी इंफॉर्मेशन रखता है। अगर ऐसी ना हुई तो उसके लिए मैंने बीमारियों की बात भी आपसे कर दी थी। ज्यादातर जेनेटिक बीमारियां न्यूक्लियस की बीमारियों की वजह से होते हैं, न्यूक्लियस की प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं, जिसको मैंने अल्जाइमर या पार्किंसन कहा था, या एलएस का एएलएस कहा था, और ये सब बीमारियां जो होती हैं, इनकोऑर्डिनेशन कहा था, ऑटो इम्यून डिजीजेस कहा था, ये सब पैदा होने वाली चीजें हैं। खास तौर पर इनका संबंध पिछली जनरेशन से होता है, और इसी की वजह से ये सब आगे वही न्यूक्लियस डिफेक्ट रहा, वही आगे ट्रांसमिट हुआ, फिर आगे आने वाली जनरेशन को उस तरह की बीमारियां हो सकती है। तो ये मैंने शॉर्ट में आप सब लोगों को बता दिया। फिर उसके बाद मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी, और माइटोकॉन्ड्रिया को भी मैंने डिटेल में आप सब लोगों को समझाया था कि भाई ये एक तरह के रॉड्स टाइप होते हैं, एक तरह के एनर्जी प्रोड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, एक तरह बिजली घर होता है, जो बिजली पहुंचाएगा तो सभी मशीनरी चलेगी, सभी कुछ अंधेरा दूर होगा, काम चलेगा। अगर ये नहीं रहेगी तो हमारी मोटर नहीं चलेगी, हमारी सिंचाई नहीं होगी, पानी नहीं आएगा, क्योंकि बिजली नहीं है इसलिए मोटर चल नहीं रही। तो वही काम ये जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इसके बारे में भी मैंने पिछले प्रोग्रामों में बताया था, और इसका काम ज्यादातर इफेक्ट ब्रेन पे होता है अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल ना हो, क्योंकि पूरा संचालन हमारी बॉडी का होता है वो ब्रेन से होता है। ब्रेन से नर्व्स इश्यू होती हैं, और वो जो रीढ़ की हड्डी के द्वारा पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं, और अगर ब्रेन में ही इसकी कोई कमी पेशी रह गई, क्योंकि सेल तो ब्लड में भी है, सेल तो बॉडी के भी है, सेल तो हरेक अंग के ही है, वो मैंने आप सब लोगों को बता दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया हर एक सेल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही हर एक सेल की अंदर की कारकर्दगी जो भी करना है उसको नॉर्मल चल सकता, नहीं तो अंधेरे में तो कोई काम नहीं ना होगा। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था लिवर के लिए, लंग के लिए, हार्ट के लिए, फेफड़ों के लिए, हमारे इंटेस्टाइन के जितने भी कारोबार चलते हैं, अगर उनमें समझ कर लो कि लाइट ही नहीं है तो सारे के सारे काम जो हो पीछे रह जाएंगे, रुक जाएंगे। और अंदाजा लगाइए कि अगर ब्रेन के कारण काम रुक गए तो बड़ी बात हो जाएगी, डिमेंशिया वगैरह की प्रॉब्लम आ जाएगी। और कई बार ऐसा होता ना, बिजली इंटरकरंट आती, कभी आगे चले गई, आगे चले, इस तरह की कंडीशनें होती हैं, तो उस तरह की कंडीशन में क्या हो, एपिलेप्सी वगैरह की बीमारियां आ जाती है। मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया सही नहीं है, जिसकी वजह से कभी करंट आ जाता है, कभी नहीं आ जाता, कोई कनेक्शन ढीला होगा, कुछ ऐसा हो गया होगा। इसी तरह से दिमाग के अंदर जो सेल के अंदर जितने भी इस तरह के होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितने भी उसके डिवीजन्स होती हैं, उसके हिसाब से ये बिजली सप्लाई करता है, और इसकी बिजली सप्लाई करने से ही दिमाग काम करता है, बिजली सप्लाई करने से मसल मांसपेशियां काम करती हैं, और अब मांसपेशियां या किसी अंग ने काम ने हार्ट ने काम क्या करना, सर्कुलेशन देना, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया उसके सेलों का नॉर्मल नहीं है तो फिर सर्कुलेशन नहीं जाएगा, खुराकें नहीं जाएगी। इसी तरह लंग्स का काम है ऑक्सीजन सप्लाई करना, अब वो उनका माइटोकॉन्ड्रिया ही सही नहीं है, चाहे बाहर से ऑक्सीजन आ रही है, एनवायरमेंट से तो आ ही रही है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, लेकिन वो अंदर जा रही है, जाने वाला प्रोसेस भी कमजोर हो गया, फेफड़ों के अपने माइटोकॉन्ड्रिया जिसको लाइट करनी थी, वो मोटर चलानी थी कि पानी निकले, उसे काम करना था कि फेफड़े सांस ले पाए, वो नहीं ले पाएंगे। तो ये सब चीजें इसकी वजह से हो जाती है, जिसकी वजह से एपिलेप्सी, स्ट्रोक, सीजर के बारे में मैंने आप सब लोगों को बताया था कि सीजर केवल एपिलेप्सी के नहीं होते, बहुत तरह के सीजर होते हैं, लेकिन हाँ जितने भी सीजर्स आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, या जर्क है बॉडी के एकदम जर्क, कई लोग सोते सोते भी एकदम जर्क मारना शुरू कर देते हैं, या कई बार काम करते करते जाग नींद नहीं है, काम कर रहे हैं लेकिन एकदम बांह झटक जाती है, टांग झटक जाती है, ये सब इस तरह की जो बीमारियां हैं ये इसकी वजह से होती है कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर है वो नॉर्मल काम नहीं कर रहा। इसकी स्ट्रक्चर की बात भी मैंने आप सब लोगों को बता दी थी, और ये भी मैंने कह दिया था कि इसके ऊपर भी एक लेयर, डबल लेयर होता है, एक इनर लेयर होता है, एक आउटर लेयर होता है। जितने भी ऑर्गेनल्स सेल के अंदर होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, वो सब उस साइटोप्लाज्म के एनवायरमेंट में रहते हुए उससे सेपरेट रहते हैं, क्योंकि इनका अपना किला होता है, इनकी अपनी चार दीवारी होती है, वो डबल लेयर दीवार होती है। जैसे सेल का मेम्ब्रेन था डबल लेयर था, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन था डबल लेयर था, इसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया वाले जो रॉड टाइप है, ये रॉड टाइप होते हैं, वो ये भी डबल लेयर्ड होते हैं, और ये रोशनी देने का या एनर्जी देने का काम करते हैं, और इस रोशनी से, इस एनर्जी से हमारे शरीर का जो पूरा काम है वो उसी तरह चलना शुरू हो जाता है। और पक्की बात होगी कि इसका काम क्या हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस करना, और इसी से सभी चीज को रेगुलेट करना, इसी से ही हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म, आवाजाही, लेना देना जितना भी है हमारे शरीर का। अब मान लिया जाए ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो लोगों को कब्ज हो जाती है, मान लिया माइटोकॉन्ड्रिया सही नहीं तो किसी को डायरिया भी लग सकता है। तो ये चीजें क्या इंडिकेट कर रही, चाहे अगर रेगुलरिटी मेंटेन नहीं है तो ये इसी की वजह से है कि करंट नॉर्मल नहीं, करंट नॉर्मल नहीं है तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर मैंने आप सब लोगों को बताया भाई इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है, फंक्शन का भी पता लग गया। और ये भी एक बात और इम्पोर्टेंट बात मैं भूल ना जाऊं, वैसे ये मैंने कही है, रिपीट कर दूं कि जितना गार्बेज बनता है ना सेल के अंदर, सेल मरते हैं डेली डेली, रोजाना कुछ सेल मरते हैं, कुछ सेल नए पैदा होते हैं, क्योंकि रूटीन है बोन्स के अंदर, बड़ी बड़ी बोन्स हैं उनमें सेल बन ही रहे हैं, रोजाना बन रहे हैं। और एक सेल की उम्र कितनी है, 120 डेज, 120 दिन के बाद जो आज सेल बना है उसको मर जाना है। और डेली सेल बनते हैं, जैसे राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, हर 6 साल बाद वो जो मेंबर है बदलते रहते हैं, नए आते रहते हैं और दूसरे रिटायर होते रहते हैं। इसी तरह ही ये जो सेल डेथ है ये एक नॉर्मल कर्म है, आदमी को जो बना है उसको मरना ही है। इसी तरह सेल के अंदर भी वो सेल की जो डेथ है वो होनी ही है, और जो उसका गार्बेज बचेगा बाकी सारा, जिसको हम जो तीसरे पाशा की तरह ये कहते हैं कि क्या करो उसको फुल हर साल पाने, उसमें जो भी आपका राख हो उसको इकट्ठी कर लो और चलते हुए पानी में उसको डाल दो, ठीक उसी तरह ये जो चलते हुए पानी में डालने वाला काम या उसको बर्न आउट करके शरीर से सेल से निकालने वाला काम है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही है। आजकल तो बिजली के चूल्हे से लाश जलाई जाती है, तो ये बिजली का काम जो करने वाला है ये इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी ये करता है। तो फिर इसके ट्रीटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरह किसी भी चीज को चालू करने के लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम आदमी हैं एक दमी, और दम किससे चलता है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन शरीर में जाएगी तब हम चल पाएंगे, हमारे अंदर चर्बी फैट जो भी कुछ प्रिजर्व तो रहता ही है, इसीलिए बिना खुराक के भी हम बहुत सारे काफे दर्शन सिंह पेरूमान 81 डेज जिंदा रह गया था, बुखार खुराक ही रह गया था। इसी तरह ही हम लोग, हमारे शरीर की जो भी बंतर है इसमें वो शरीर की बंतर के तत्व तो हैं ही ना, जब तक इसकी एग्जिस्टेंस है, जब ये शरीर दिखाई देता है तो इसका मतलब उसके बनाने वाले तत्व उसके अंदर हैं। और एक एक अंग से जब आप भूख हड़ताल करते हो या जब आप मरण व्रत रखते हो तो एक एक अंग से वो चीजें ली जाती हैं, और लेने के बाद उनको फिर सिंथेसाइज किया जाता है कि शरीर की एनर्जी पूरी करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, वो सिंथेसाइज होके जब तक जीवन चलता रहता है बंदा मरता नहीं है। अल्टीमेट जब वो स्टॉक खत्म हो जाता है तब किसी आदमी की डेथ होती है। तो इसीलिए ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए हमारे पास सबसे पहली बात यह है कि शरीर में मटीरियल तो है, अब नहीं बाहर से खुराक आ रही तो ना सही, लेकिन इसको तो ऑक्सीडेशन किया जाए ना, तो उसके लिए सबसे पहला काम मैंने कहा था ऑक्सीजन का कि एक्सरसाइज की जाए। उसके बाद अगर खुराक दी जा रही है, क्योंकि सभी तो मरण वक्त पे नहीं है ना, खुराक दी जा रही है तो खुराक इस तरह की दी जाए जो कम मात्रा में जाने के बाद भी ज्यादा एनर्जी पैदा कर सके। जैसे जो है ना पानी वो हर 2-3 मिनट बाद हजम हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, असिमिलेट हो जाता है। जो है कार्बोहाइड्रेट्स, इसको 3-4 घंटे में हमारे बॉडी से इसका इवेपोरेट होना या गार्बेज के तौर पर, रेक्टम के तौर पर इंटेस्टाइन लार्ज पोर्शन जो है इंटेस्टाइन का उसमें चले जाना, ये अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद इसका कोई काम नहीं रह जाता। प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो लंबे समय तक, जैसे पत्थर के कोले की एग्जांपल मैंने आप सब लोगों को दी थी कि पत्थर का कोला है वो अगर जलता है तो लाल हो जाता है, तो लंबे समय तक वो हीट देता रहता है, और लकड़ी का कोला है तो वो जल्दी बुझ जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है, उसकी हीट ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकती। तो ये जो जितने भी है, ये जितनी भी खुराक होती है ना, उसका मतलब है एनर्जी प्रोड्यूसिंग, हीट प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, और हीट प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस ये जो हैं, आलू है या सब्जी है या जो भी कुछ खाते हैं, इनकी एक लिमिट है। प्रोटीन की लिमिट इनसे सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लंबे तक वो हीट उसको रख सकते हैं। तो क्या जब आपको ये लगे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया वीक है जिसकी वजह से एपिलेप्सी हो रही है या स्ट्रोक हो रहा है या सीजर्स हो रहा है या मानसिक तवाजन सही नहीं है, तो उस बंदे को सबसे पहली बात तो ये करो कि उसको खुराक एनर्जी वाली दो, एक्सरसाइज भी करवाओ, एनर्जी वाली खुराक दो। तो एनर्जी वाली खुराक क्या हुई? प्रोटीन स्लाइड, प्रोटीन स्लाइड। उसके बाद जितनी भी चीजें टॉक्सिक टॉक्सिसिटी पैदा करती है, वैसे ये जब हम बता रहे थे तो मैंने आपको टी के बारे में भी कहा था, हालांकि टी हमारी नॉर्मल खुराक का हिस्सा नहीं है, एक स्टिमुलेटर है कैफीन के तौर पर। और इस तरह की जितनी भी, आपको नहीं पता कि कौन सी चीज पहले दोस्त के तौर पर हमारे साथ चल रही है लेकिन आप दुश्मनी निभा रही। इसीलिए बोलते हैं कि दाना दुश्मन अच्छा जो मूर्ख दोस्त, क्योंकि मूर्ख दोस्त का कोई पता नहीं कब नुकसान कर दे, और जो दाना दुश्मन है वो उस वक्त वार करेगा जब उसको पता चले कि अब मैं इसका नुकसान कर ही सकता हूं। जब उसको पता हो कि नहीं इसका नुकसान मैं नहीं कर सकता तो वो दुश्मनी नहीं जताएगा, वो दोस्ती जताएगा ताकि इसका भ्रम बना रहा है मेरे ऊपर, मेरे पर ये शक ना करे। लेकिन जो दोस्त होता है ना उसका तो पता ही नहीं चलता, उसके पर हम विश्वास कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं तो पता नहीं कब वो नुकसान कर दे। वही बात इस डाइट के बारे में मैं आपको कह रहा हूं कि हम लोग रूटीन में बहुत सी चीजें खाते हैं, कोई बात नहीं, तंदुरुस्त शरीर है, उसको नहीं जरूरत है तो उसको निकाल देगा, टट्टी के रस्ते, पेशाब के रस्ते, सांस के रस्ते, पसीने के रस्ते निकाल देगा। लेकिन अगर वो चीज हमारा शरीर पूरा काम नहीं कर रहा, निकाल नहीं रहा, तो गार्बेज के तौर पे शरीर पे रुक जाएगी और उसके बाद उसकी टॉक्सिसिटी जहरीला मादा बन जाएगा। इसलिए क्या करें, खुराक डाइट तो आपने मेंटेन कर ली, उसके बाद फिर ऐसा करें कि भाई जितनी भी चीजें टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने वाली हैं उनको एकदम बंद कर दें, एकदम बंद कर दें, ताकि वो टॉक्सिसिटी जितने भी दोस्त है, कोई बात नहीं भाई, 10 दिन भाई इसके पास नजदीक नहीं आना है, दोस्त है, रोजाना चाय पीते ही हैं, नहीं गुजारा होता, लेकिन एक बार उसको अलग करके देखें कि होता क्या है, मुझे इसकी जरूरत कितनी है और मैं इसके बिना कैसे चल सकता हूं कि नहीं चल सकता हूं। क्योंकि शरीर में एक ऐसी समर्था है कि अगर एक चीज खुराक वाली आप उसको नहीं देते, दूसरी चीजें शरीर में जा रही हैं, तो ये उनसे सिंथेसाइज करके जरूरत की चीजें बना लेगी। मैंने अभी कहा जब इसकी न्यूक्लियस की बात कर रहा था कि सिंथेसाइजिंग वाला प्रोसेस भी कुदरत ने हमारे शरीर में डाला हुआ है कि नहीं, अगर सही चीज मुझे आयरन चाहिए, आयरन नहीं मिल रहा, विटामिन सी चाहिए, विटामिन सी नहीं मिल रहा, तो जितनी चीजें अंदर जा रही हैं उनसे उसने सिंथेसाइज करके काम चला लिया। आप टी नहीं पीते, अब टी पी रहे थे, अब मैंने आपको कहा कि नहीं भाई, क्योंकि हालात इस तरह बन गए हैं कि अभी हमको सभी चीजों को अलग करना होगा, तो फिर क्या करेंगे, अलग करेंगे तो फिर चाय को भी, क्योंकि चाय भी शरीर की खुराक का हिस्सा नहीं है, इसको भी अलग कर दें। उसके बाद पता चलेगा आपको कि आपको इसकी कितनी जरूरत है, अगर नहीं जरूरत तो अलग कर दो, क्योंकि है तो टॉक्सिसिटी ही ना। कोई भी चीज जो जबरदस्ती आपसे काम करवाती, चाय जबरदस्ती हमसे काम करवाती है ना, क्योंकि हम सुस्त होते हैं तो चाय कप पी लो थोड़ी चुस्ती आ जाए, तो जबरदस्ती हमें उस तरफ लगाती है। और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उसको निकाल दे, उसके बाद जितनी भी दवाइयां जितनी भी एंटीबायोटिक जितना भी ऐसा कुछ खा रहे हैं एक बार उसको स्टॉप करके देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज की वजह से क्या क्या चीज हमारे शरीर में बीमारी के तौर पर बढ़ रही है या कम हो रही। ऐसे होता है कि लोग बड़े लंबे समय से हमारे गांव में हम देखते थे कि लोग बीका सोन के कैप्सूल खाए जा रहे हैं, लगातार ही खाई जा रही, जरूरत है नहीं लगातार ही खाई जा रहे और डॉक्टर के पास उनको तो पता नहीं है कि बी कम्प्लेक्स जितना बॉडी को चाहिए वो उतना रख लेगा, बाकी पेशाब के रस्ते जल्दी खारिज हो जाएगा, पेशाब पीला आना शुरू हो जाएगा और डॉक्टर को वो कंप्लेन कर रहे कि डॉक्टर जी मेरा पेशाब पीला था। अब डॉक्टर क्या समझे इसको पीलिया हो गया, ऐसा नहीं होता। तो ये सब चीजें जानने के लिए जरूरी ये है कि जितनी भी खुराक के तौर पे तत्व आप ले रहे हैं शरीर के अंदर दे रहे हैं उसको भी एक बार अलग करके देखें, फिर उसके बाद उसकी खुराक निर्धारित करें और ये देखें कि पहले वाली जो चीज जा रही थी उसके ना जाने से शरीर में कोई कमी पेशी आ रही है, उसकी डिमांड क्रिएट हो रही है नहीं हो रही है, तो इसका मतलब फालतू हम ले रहे थे ना, और जितनी भी चीजें फालतू हम ले रहे हैं वो टॉक्सिसिटी होती है। तो अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा तो उसके ऊपर ज्यादा लोड ना डालें, ज्यादा बोझ ना डालें, जितनी रोशनी की जरूरत है यार उतने बल्ब जगाओ, आपका मीटर उतना लोड नहीं ले रहा तो ज्यादा हर जगह जगह पर रोशनी करने की क्या जरूरत है, जहां काम कर रहे हो वहां रखो बाकी बंद कर दो। तो ये चीज, उसके बाद मैंने ये कहा था कि CQ10 के नाम पे इस तरह की कंपोजिशन मिलती है या एल कार्सिटाइन वगैरह के नाम पे मिलती है या एल सिट्रोलाइन के तौर पे मिलती है, ये और हमारी खुराक में बहुत सी चीजें मैंने बताई थी, हदवाना है जिसको वाटरमेलन हम लोग बोलते हैं, विटामिन सी है, ये सब चीजें आप रूटीन में दे सकते हैं या वाइटमिन जो है उस हालात में। यंग एज में मैंने ये कहा था कि वाइटमिन पर शरीर को मत डालो, अगर बनी बनाई खरीद खीर दोगे तो जिस अंग को जिस चीज को सिंथेसाइज करना है वो बंद कर देगा कि बनी बनाई खीर मिल रही मैं क्यों कष्ट करूं भाई। अगर जैसे इंसुलिन वगैरह लेनी शुरू कर देते ना डायबिटिक्स वगैरह लोग और अल्टीमेट वो एडिक्टेड हो जाते हैं, उसके एडिक्टेड हो जाते हैं, कारण ये होता है डे टू डे एडिक्टेड हो जाना किसी भी इंसुलिन का, पेंक्रियास जितना काम कर सकती थी उतना भी नहीं करेगी, ये बनी बनाई मिल रही तो मैं क्या करूं। इसी तरह बहुत से अंग जो जो एंजाइम तैयार करते हैं वो एंजाइम तैयार नहीं करेंगे और चुप हो जाएंगे और अल्टीमेट जब वो दवाई आप छोड़ेंगे तो अल्टीमेट आपको बैड इफेक्ट होंगे। इसीलिए बिना जरूरत के कोई भी चीज लेनी वो टॉक्सिसिटी ही पैदा करती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी दवाइयां जब इस तरह का हालात हो, किसी को भी एपिलेप्सी है, किसी को भी सीजर्स हो रहे हैं, किसी को भी डिमेंशिया, डिमेंशिया की पहली स्टेज, जरूरी नहीं कि सब ये एकदम डिमेंशिया पे पहुंच गया, डिमेंशिया तो आखिरी स्टेज है पागलपन की। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारे जैसे बुजुर्ग जो लोग हैं अब आप 70 हो गए, चले जा रहे हो कहीं रस्ते में और आपको याद नहीं यार पता नहीं कौन सी रोड है मैं किधर जा रहा हूं, आगे मैं तो घर जा रहा था ये पता नहीं रोड कौन सी आ गई। रोजाना उस रोड पे आप गुजरते हो, रोजाना जो काम आप करते हो उसमें ही आपको भ्रम हो जाए तो ये समझो आपका माइटोकॉन्ड्रिया शरीर में पूरी तरह काम नहीं कर रहा है, एनर्जी लाइट पूरी नहीं दे रही है, तो उसी वक्त आपको फिर ये खुराक बदलनी होगी, उसी वक्त आपको फिर जो दवाइयां खा रहे, खासतौर पर आजकल हालात क्या है कि जो भी इस उम्र के आम लोग है ना कुछ तो खा ही रहे हैं, रेयरली कोई होगा वो कहेगा कि नहीं मैंने तो कभी दवाई ली नहीं। पुराने जमाने में तो बहुत लोग मिल जाते थे जो बोलते थे कि नहीं मैं तो दवाई लेता ही नहीं, मैंने तो आज तक कभी एस्पिरिन की गोली भी नहीं दी। लेकिन अब इस तरह के आदमी को ढूंढना बड़ी मुश्किल की बात होगी, तकरीबन कुछ ना कुछ वो ले ही रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब आपको इस तरह के साइन मिलने शुरू हो जाएं जो ये इंडिकेट करें कि इसका माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर काम नहीं कर रहा, तो उस वक्त इन सब चीजों को जो भी आप दवाई के तौर पे खा रहे हो, जो भी आप खुराक के तौर पे खा रहे हो, उसको एक बार सेपरेट अलग कर दें। और खुराक की जरूरत तो है लेकिन दो क्या, वो जो प्रिपेयर्ड मील है जैसे मैंने आपको CQ10 की बात की है, जैसे हदवाने की बात की है, जैसे विटामिन सी की बात की है, इस तरह की चीजें जिनकी हमें रोजाना डे टू डे ज्यादा जरूरत है, वाइटमिन सी और बी के बारे में मैंने आपको कहा था कि ये वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स हैं, और वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स जितने भी हैं ये जल्दी, अब घी फैट है ना, इस तरह के जो हैं वो जल्दी खारिज नहीं होते शरीर से, लेकिन वाटर सॉल्युबल हैं वो जल्दी खारिज होते हैं, जल्दी वेस्ट हो जाते हैं। टेम्परेचर बॉडी का अगर बढ़ जाए, चाहे बुखार की वजह से चाहे किसी की वजह से, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ ही, इवन आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, हीट बढ़ गई है बॉडी की, तो उससे पसीना आना शुरू हो जाता है, साल्ट निकलने शुरू हो जाते हैं, उसी वक्त वाइटामिन भी आपके खारिज होते हैं। तो सबसे ज्यादा वाइटामिन जो खारिज होता है वो है वाइटामिन सी और वाइटामिन बी। इसीलिए डॉक्टर लोग हरेक बुखार में ये रिकमेंड ही करते हैं कि भाई इसको वाइटामिन सी और बी वगैरह रेगुलरली देना शुरू करो। और देसी चीजों में हमारे पास नींबू है, हमारे पास ये जो ऑरेंज है, इस तरह की चीजें हैं। और वीकनेस के तौर पर मैंने आपको हदवाने के बारे में कहा था कि हम साधारण बात समझते हैं, लेकिन हदवाना जो है, वाटरमेलन जो है, इसमें एल-सिट्रुलाइन नाम का तत्व जो है वो बहुत एनर्जी देने वाला है और बहुत सी चीजें हमारी कवर करता है, थोड़ी क्वांटिटी में भी वो बहुत ज्यादा काम कर देता है। तो फिर आपको ये करना है। चलो खैर, ये वो था जो आज से पहले मैंने सभी प्रोग्रामों में हिंदी अंग्रेजी पंजाबी सभी में आपको दोहरा दिया था, ताकि आपको याद रहे कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं बोल गया तो बोल गया, नहीं, जैसे मुझे याद है ना वैसे आप लोगों को भी याद हो जाए कि क्या क्या चीज हुई थी, उसका क्या क्या पर्पज था, और अगर ऐसा पर्पज नहीं सॉल्व हो रहा तो मुझे क्या करना। उसके बाद और जो ऑर्गेनल्स हैं और जो अंग हैं हमारे इस सेल के अंदर, उसका नाम है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स और लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये इस तरह की कुछ और अंग हैं और चीजें हैं जो सेल के अंदर अंदर घूम रही हैं। तो जो सेंट्रोसोम होते हैं ना वो सेल के नजदीक, जैसे क्रॉसिंग नहीं होता, या क्रिश्चियन लोग गले में पहनते हैं ना क्रॉस, ये जो क्रॉस की तरह के इस तरह के ऑर्गेनल्स हैं, और इनके ऊपर इसकी निशानी क्या है कि जैसे कांच की दो ट्यूबें हों और उनका क्रॉस बना दिया जी, कांच की ट्यूब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ट्रांसपेरेंसी, इस ये जो है ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो जो माइटोकॉन्ड्रिया की लाइट है ना, ये इसके ट्रांसपेरेंट जा रही होती है और माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो ऐसे ही लगता है। तो आसान समझने के लिए मैंने ये कह दिया कि जो क्रिश्चियन लोग हमारे वो क्रॉस पहनते हैं ना, क्रॉस की तरह अगर दो ट्यूबें आपस में जुड़ी हो, उसका क्रॉस बना हुआ हो, तो इस तरह के ये जो सेंट्रोसोम्स होते हैं, और इन सेंट्रोसोम्स के ऊपर एक और बहुत बड़ी, और हमेशा हमेशा ये एक जोड़े में रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक सेंट्रोसोम यहां हो गया, एक फिर कहीं और हो गया, एक फिर कहीं हो गया, नहीं, जहां जहां भी होंगे ये जोड़े में होंगे, जोड़े में होंगे, ये इसकी पक्की निशानी है। और इसके ऊपर इसकी निशानी क्या है बाकों के, बाकी इस तरह के और बहुत सी चीजें हैं, जैसे हमारे सेंट्रोसोम्स हैं इनके ऊपर भी, और सेंट्रियोल्स हैं, ये भी इसी तरह रॉड के ही होते हैं, लेकिन इनका फर्क क्या है, सेंट्रोसोम्स के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, जैसे आप नाक है ना आपका, मैं बड़ी आसान एग्जाम्पल आपको दूं, आपका नाक है, नाक बैरल है ना, एक ट्यूब है ना, दो ट्यूबें पैरेलल जा रही हैं, और आगे अपनी आंखों का क्रॉस हो गया, एक तो ये हो गया, ठीक इसी तरह की कंडीशन सेल के अंदर होती है जिसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। और आप ये देखते हैं कि नाक के अंदर बाल होते हैं, इसको हम सीलिया बोलते हैं, ये जो सीलियाज हैं, ये जो सेंट्रोसोम है इसके ऊपर ये सीलियाज होते हैं, ये इसकी पहचान है। सीलियाज का काम क्या है, जैसे कोई नाव चलती है ना तो चप्पू चलाते हैं ना, पानी को इधर से उधर से इधर से उधर से मारते हैं, इनका काम है इन सेंट्रोसोम्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो। ये बेड़ी एक नाव की तरह इस साइटोप्लाज्म के अंदर घूमते रहते हैं, जहां जहां इसकी जरूरत है, जैसे जैसे भी होना है वो नॉर्मल काम इसका हो। इसको हम एक तो इसका दूसरा नाम है फ्लाजेला, सीलिया, जैसे मछली की पूंछ होती है ना उसको फ्लाजेला बोलते हैं, उसके ऊपर एक झालर सी होती है, ठीक इसी तरह की इसकी आमतौर पर जो कंडीशन होती है इसको हम सीलिया या फ्लाजेला हम बोलते हैं। और ये इन सेंट्रोसोम्स की ट्यूब्स को मूव करने में मदद करते हैं कि यहां काम हो गया मिस्त्री जी, अब तुम वहां जाओ, अब वहां काम हो गया, इस तरह ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के अंदर घूमते रहते हैं और ये यकीनी बनाते हैं कि जब सेल की डिवीजन होनी हो तो हरेक चीज नॉर्मल, ताकि जितने भी ये सेंट्रोसोम्स हैं उनकी डिवीजन बराबर बराबर हो सके, जितने भी इसके ऑर्गेनल्स हैं अंदर अंग हैं वो बराबर बराबर, ऐसा ना एक बाप के बच्चे अब बाप की जायदाद को डिवीजन कर रहे हैं तो कि ये एक भैंस तेरी, ये एक भैंस मेरी, ये एक गाय मेरी, एक गाय मेरी, ऐसा ना हो कि गाय किसी एक ही तरफ चल जाए, भैंस एक ही तरफ चल जाए, ऐसा ना हो। इस चीज को जो यकीनी बनाते हैं ये बराबर के बराबर वंड करते, जैसे एक लाइन ही खींचता कोई आदमी, और ये लाइट वाले हैं, क्यूब है, क्यूब क्रॉसिंग वाली है, और डबल लेयर्ड होते हैं, ये आपस में बांट जाते हैं कि भाई ठीक है, जिन्हें यूएनओ की फोर्स नहीं होती, कहीं लड़ाई हो जाए तो यूएनओ की फोर्स जाती है और बोलते ठीक है भाई अब सीज फायर हो गया है, तुम अपनी जगह रहो, तो हम अपनी जगह रहो, हम सेंटर में हैं। ठीक इसी तरह ये इसका नाम ही सेंट्रोसोम रख दिया, सेंट्रलाइज पोजिशन इनकी होती है, हर एक चीज को बराबर बराबर बांटने के लिए इनका असल काम होता है इक्वल सेल डिवीजन। और इसमें जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो उनकी सेपरेट गिनती अलग अलग करनी, ये सब इनका काम होता है, और इसके हिसाब से ही आगे आने वाला जो सेल है हमारा, आगे नया बनने वाला सेल है हमारा, इसके ऊपर ही निर्भर करता है कि भाई आगे आने वाला सेल नॉर्मल होगा कि नहीं नॉर्मल होगा। मान लिया जाए, अब आगे की बात आ गई, मान लिया जाए कि सेंट्रोसोम नॉर्मल नहीं है वाले हैं, क्यूब है, क्यूब क्रॉसिंग वाली है, और डबल लेयर्ड होते हैं, ये आपस में बांट जाते हैं कि भाई ठीक है, जिन्हें यूएनओ की फोर्स नहीं होती, कहीं लड़ाई हो जाए तो यूएनओ की फोर्स जाती है और बोलते ठीक है भाई अब सीज फायर हो गया है, तुम अपनी जगह रहो, तो हम अपनी जगह रहो, हम सेंटर में हैं। ठीक इसी तरह ये इसका नाम ही सेंट्रोसोम रख दिया, सेंट्रलाइज पोजिशन इनकी होती है, हर एक चीज को बराबर बराबर बांटने के लिए इनका असल काम होता है इक्वल सेल डिवीजन। और इसमें जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो उनकी सेपरेट गिनती अलग अलग करनी, ये सब इनका काम होता है, और इसके हिसाब से ही आगे आने वाला जो सेल है हमारा, आगे नया बनने वाला सेल है हमारा, इसके ऊपर ही निर्भर करता है कि भाई आगे आने वाला सेल नॉर्मल होगा कि नहीं नॉर्मल होगा। मान लिया जाए, अब आगे की बात आ गई, मान लिया जाए कि सेंट्रोसोम नॉर्मल नहीं है तो उसमें ज्यादा तरक्की होगा, हमारे पास है ना

वो उनकी सेपरेट गिनती अलग अलग करनी, ये सब इनका काम होता है। और इसके हिसाब से ही आगे आने वाला जो सेल है हमारा, आगे नया बनने वाला सेल है हमारा, इसके ऊपर ही निर्भर करता है कि भाई आगे आने वाला सेल नॉर्मल होगा कि नहीं नॉर्मल होगा। मान लिया जाए, अब आगे की बात आ गई, मान लिया जाए कि सेंट्रोसोम नॉर्मल नहीं है तो उसमें ज्यादातर की होगा। हमारे पास है ना, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, मेरी तो जी किडनी ही एक है। बड़ी ये बात लगती है ना, जब कुदरत ने शुरू से लेकर दो किडनियां बनाई हैं तो फिर तेरे में एक कैसे होगी। या कुछ लोगों को आपने ऐसे देखा होगा कि एक कान है, दूसरा कान बाहर बना ही नहीं है, या एक कान बना है ऊंचा है, एक कान नजदीक नीचे है, लेवल से नीचे है। इस तरह ही बहुत सी विकृति, इनको हम लोग होते हैं विकृति, या दूसरे टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं एनोमलीज। इस तरह की बहुत सी एनोमलीज है जो आप आम आदमी सोचता ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आजकल आपने बहुत सारा सुना होगा कि भाई इसकी तो किडनी ही एक है, दो हैं, उसे काम चलता था, उसने कुदरत ने एक ही बनाई है उसको, कुदरत ने नहीं बनाई। ये जो सेंट्रोसोम मैं आपको बोल रहा हूँ, इसने डिवीजन करनी थी, इसने नॉर्मल नहीं की। या एक तरफ का कटाव हो गया, सभी जो दूध देने वाली गाय भैंसे थी वो एक को दे दी, दूसरे तरफ उसको तो दिया नहीं, तरफ भूखा मर रहा है ही कुछ नहीं उसमें। तो इस तरह की जो कंडीशन है, और या ये काम ऐसा तो नहीं होगा अकेली किडनी में होगा, क्योंकि पूरे सेल के वजूद की बात हो रही है, पूरी बॉडी के वजूद की बात हो रही है, तो उस हिसाब से ब्रेन भी डिफेक्टिव रह जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि किसी का शरीर तो बहुत बड़ा है, सिर बहुत छोटा है। किसी का आपने देखा होगा कि शरीर छोटा है, सिर बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। ये इस तरह की जितनी भी चीजें हो रही हैं, हालांकि जो सिर बड़ा होने के और भी बहुत से कारण हैं, जैसे हाइड्रोसेफलस वगैरह की मैंने बात बताई थी, और बहुत सी बीमारियों के बारे में मैंने पीछे प्रोग्राम दिए थे। लेकिन हाँ, जब भी इस तरह की किसी अंग में डिवीजन का आप फर्क समझते हो, डिवीजन नॉर्मल नहीं हुई, उस हिसाब से आप ये समझ सकते हो कि इसका सेंट्रोसोम ने काम पूरा नहीं किया। जितने भी अंदर सेंट्रोसोम थे, जितनी भी यूएनओ की फोर्सेस थी, उसने सीज फायर करवा दिया था, लेकिन उसने जो सीज फायर गलत हो गया, एक तरफ तो बेचारी ज्यादा डेथ होगी, दूसरी तरफ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह अंगों का छोटा बड़ा होना या किसी अंग का एब्सेंस हो जाना, होना ही ना, जैसे किडनी की बात मैंने की है, या किसी का टेस्टिस ही एक होना, ये तो टेस्टिस की बात तो मैंने याद आ गई तो मैं बोल रहा हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह जाते हैं, जिसको हम अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं। अनडिसेंडेड टेस्टिस एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो सातवें आठवें महीने प्रेगनेंसी के दौरान हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हुई तो वो अंदर रह गया। पर लेकिन हमको पता तो चलता है ना कि भाई नहीं, वो आना था, ये एंग्वाइनल कैनाल से नहीं पास हुआ, एक तरफ रुक गया, एक तरफ का बाहर आ गया। ये तो किरार में बात हो सकती है। लेकिन अगर कोई कहे कि इसका टेस्टिस है ही एक, इसका टेस्टिस है ही एक, या किसी लड़की में पैदाइशी तौर पे ओवरी है ही एक, आजकल तो वैसे हालात के तौर पे अगर ओवरी एक निकाल देते हैं तो बच्चे फिर भी पैदा होते हैं, टेस्टिस एक एक होता है तो भी बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि वो जो काम क्रिया होती है, ठीक है, जो दो महीने में होनी थी, एक काम ने करना था, सॉरी एक महीने में करना था, वो दो महीने में हो रहा है। फर्क तो इतना ही पड़ेगा उसमें, लेकिन काम हो रहा है। और ये सब इस तरह की जो डिवीजन होती है ओवरी में, टेस्टिस में, किडनी में, या और जितने भी अंग हैं, अगर वो एक ही अंग है तो वो नॉर्मल नहीं है। क्योंकि नॉर्मल का जब मैं नॉर्मल का लफ्ज बोलता हूं ना, तो उसका मेरा कहने से मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उनकी आपस में एक रेशो है कि ये इतना होगा तो ये इतना होगा, ये इतना होगा तो ये इतना होगा, हमारी उंगली इतनी लंबी होगी तो हमारा फ्लेंजेस इतना होगा, हमारा रिस्ट इतनी होगी तो यहां से लेकर एल्बो तक ये इतना होगा। ये एक मेजरमेंट, अभी तो मेडिकल साइंस ने इशारा का, हम लोग एनाटॉमी में पढ़ते हैं, सारा कुछ कर दिया है कि भाई इतना इतना होगा। लेकिन जब ये चीज, ये रेशो एल्टर कर जाए कि नहीं भाई एक मां तो छोटी है,

0: बड़ी है, एक ऐसे ही लगता है कि जैसे अपने शोल्डर के साथ जुड़ी हुई हो, छोटी सी बांह रह जाती है। ऐसे तो मैंने देखे हैं कई लोग कि ऐसे हो जाते हैं। इस तरह एक टांग ही छोटी हुई है, एक टांग पूरी बड़ी हुई है। इस तरह की जो डिवीजन या इस तरह का जो भी कुछ हो जाता है, ये सेंट्रोसोम की वजह से होता है। ब्रेन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, पुरानी बीमारियों में कैंसर टाइप की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, कान छोटा, बांह छोटी, ये सब चीजें आमतौर पर होनी शुरू हो जाती है, ट्यूमर वगैरह बढ़ने शुरू हो जाते हैं। एक तरफ तो किडनी है, दूसरी तरफ ट्यूमर है, किडनी डेवलप ही नहीं हुई। तो इस तरह के बहुत सारे कारण, जितने भी हम लोग अभी, क्योंकि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है ना, कभी यह समा था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं, हम जान ही नहीं पाते कि पेट के अंदर क्या हो रहा है। अब तो हम एक एक बात जो है पेट की जानते हैं, और उसके लिए हमारे पास डिवाइसेस हैं जिससे पहले पता कर देते कि कैसे। और यही चीजें हम लोग पहले जरूरत, बीमार होने से पहले, जरूरत पड़ने का मतलब बीमार होने से पहले, आजकल हम लोग जान लेते हैं कि इसके शरीर में किस किस चीज की कमी। जैसे अनडिसेंडेड टेस्टिस की बात मैंने आपसे कही है, और अगर टेस्टिस हो ही ना, एक पैदा हुआ वो तो टेस्टिस में आ गया, दूसरा बने ही नहीं, तो इस तरह की बहुत सी विकृतियां आ जाती हैं, जिनका मतलब ये होता है कि जो सेंट्रोसोम है इस बॉडी में, इस सेल में, वो नॉर्मल नहीं है, वो पूरी की पूरी डिवीजन नॉर्मल आगे नहीं बना रहा। तो उसके बाद इसी के साथ मिलता जुलता एक सेंट्रोसोम होता है। अब सेंट्रोसोम के बारे में मैं आपको बताऊं, है तो वही इसी का हिस्सा। सेंट्रियोल्स हैं या सेंट्रोसोम हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलती जुलती चीजें, डिवीजन करने वाली चीजें हैं, लेकिन और ब्रीक डिवीजन करनी। आपने कभी लड़कियों को वो चादरें निकालती थी ना, उसे फूल बूटे बनाती थी या दरियां बुनती थी, वो आप देखा होगा आपने, बहुत से सुनने वाले लोगों ने ऐसा पुराने जमाने, अब तो करती नहीं है लड़कियां, अब तो पढ़ाई से उसको खुशरत ही नहीं होती। पहले जमाने में तो दाज में जो लेकर जाना है, उसने जो जितनी चादरें बनाई है, जितने सिरहाने बनाए हैं, उनके फूल बूटे निकाले हैं, यही सब दाज में उसको लेकर जाना होता था, यही सब करता था कि ये लड़की कितनी मेहनती है और आगे जाकर घर को कैसे बनाएगी, इसी से ये सब जाना जाता था। लेकिन एक सेल में ये जो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स होते हैं, ये एक तो सेंट्रोसोम की बात मैंने बता दी कि जैसे क्रॉस है इस तरह का, लेकिन बना हुआ पाइपों का, जैसे कच कांच की पाइप होती है, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट पाइप हैगी है, डबल गुलाई वाली हैगी है, और उसी तरह की इस क्रॉस टाइप का ये सेंट्रोसोम्स होता है। इसके साथ मिलता जुलता और ब्रीक डिवीजन करने के लिए, और ब्रीक डिवीजन करने के लिए आपने देखा होगा कि लड़कियां जब सिलाई करती हैं ना, मैंने बड़ी बारीकी से चीजों को ढूंढा, क्योंकि जब मैं बताता था ना मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाता था, तो मुझे ये चीजें, इसीलिए मेरे स्टूडेंट मेरे से इस बात के लिए खुश थे कि इसका एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा है, ये भूलता नहीं है, हमें पता चल जाता है कि कैसे कैसे। तब मैं जैसे सेंट्रियोल्स की बात कर रहा हूं, तो ये इस तरह के हैं बारीक कि जैसे लड़कियां सुई से वो धागे गिनती है ना, इतने धागे निकाल कर, या स्वेटर बुनती हैं तो स्वेटर की गिनती के इतने कुरे निकालने हैं, इतने कुरे के बाद ये डालना है, इतने कुरे के बाद ये करना है, उसी तरह ही ये जो सेंट्रियोल है ना, ये डिवीजन को और एक्यूरेट बनाता है, डिवीजन को और एक्यूरेट बताता है। एक तरह का स्टोर हाउस इसके पास है कि भी मैं बांटूंगा, मैं चीजें बांटूंगा, भाई डिवीजन हो रही है सेल की, होनी ही है, तो मैं इन चीज को बराबर बांटूंगा, तो इतनी बारीकी से बांटूंगा कि भाई जितने इसके तंत्र हैं या इसके रेशे हैं, ये इतने इधर चले गए, इतने इधर चले गए। वही एग्जांपल मैंने आप सब लोगों को दी कि लड़कियां जब सिलाई कढ़ाई करती हैं या दरियां बुनती हैं, तो फिर वो रेशों की गिनती करती हैं, वो धागों की गिनती करती हैं, और धागों की गिनती करके फिर उसको वहां से निकालती है, ताकि इतने बराबर इधर रह जाए, इतने बराबर इधर रह जाए, तो लगेगा कि जो फूल मेरा बन रहा है वो बिल्कुल सेंट्रलाइज बनेगा, जहां मैं चाहती हूं वही बनेगा। तो इसलिए सेल के अंदर डिवीजन, जो हर हालत में 120 दिन के बाद सेल को मरना है, नए सेल को आना है, या एक सेल से अगर नए सेल की डिवीजन हो रही है, तो उसमें जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब बराबर आने चाहिए। और अगर वो बराबर आएंगे, कैसे आएंगे, एक तो पहले हमने सेंट्रोसोम बोल दिया, کہ بھائی ہم راستے میں یو این او کی فورس ہیں, ہم کھڑے ہو گئے ہیں, ادھر آپ کی فوج ہے, ادھر آپ کی فوج ہے, ہم کھڑے ہیں, اب سیز فائر ہو گیا ہے. لیکن گنتی تو نہیں نہ ہوئی, اب انصاف تو ہونا باقی ہے نا, ابھی کیسے ہوگا نا. تو وہ ہے ہمارا سینٹریفیوج, وہ گنتی ہے سلائی کی جو میں نے آپ سب لوگوں کو بتائی کہ بالکل بریک ریشے ہے, جیسے کپڑے کے ریشے ہوتے ہیں نا, تانا پیٹا جس کو ہم بولتے ہیں, اسی طرح کی وہ ڈویژن کرنے والے یہ سینٹریفیوج ہوتے ہیں, اور کام اس کا بھی وہی ہو گیا. اور یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز چلتی ہے, ویکیوز اس کو ہم بولتے ہیں, جس میں ہماری خالی سٹور ڈبے نہیں ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی کوئی چیز جو آٹے والا ہے وہ تو آٹا رکھ دیا, جو نمک اور دانی ہے اس میں نمک اور مسالہ مرچ وغیرہ رکھ دیے, کچھ برتن ہم نے خالی رکھ لیے ہیں کہ اگر کوئی چیز اور بڑھ گئی تو اس کو کہاں ڈالیں گے. اس طرح کچھ ایک چیزوں کو رکھنے کے لیے, پرزرو کرنے کے لیے, پروٹین کو پرزرو کرنے کے لیے, اور جتنے بھی فوڈ سٹفز آ رہے ہیں اس سائٹوپلازم کے اندر, ان کو اسپیشلی پرزرو کر کے رکھنے کے لیے کہ جب ضرورت ہوگی استعمال کریں گے. آپ دیکھیں نا کئی لوگ بہت موٹے موٹے ہو جاتے ہیں, بڑے موٹے موٹے ہو جاتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ اس کو ہم ویسے تو بولتے ہیں فیٹ ریزسٹنٹ سیلز ڈیولپ ہو گئے ہیں اور ان میں بہت موٹے ہو رہے ہیں. پاوے روٹی ایک ہی کھاتے ہیں, چپاتی ایک آدھی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی وہ موٹائی میں موٹے ہو رہے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں روٹیاں سے پانچ سات کھاتے ہیں پھر بھی دبلے پتلے ہیں. تو یہ سب ویکیوز جو ہوتے ہیں, ہمارے خالی پانڈے خالی برتن ہوتے ہیں, یہ ہمارے ایکسٹرا چیز کو پرزرو کرنے کے لیے ہوتے ہیں. جو بھی چیز سیل ریجن کے حالات میں بچ گئی ہے کہ اس کو کیا کریں بھائی, اس کو ٹھیک ہے ایسے ہے کہ اس کو پرزرو کر کے رکھ لیتے ہیں, جب اس کی ضرورت ہوگی, جب دیکھیں گے کہ بھائی ڈویژن کرتے کرتے اس کو گائے بھینس زیادہ چلے گی, اس کو گائے بھینس کم چلے گی, یہ جو سٹور کی آسمان ہے اس کو دے دیں گے. تو اسی طرح جتنے فیٹ یا اور چیزیں جو پرزرو باڈی میں ہو جاتی ہیں, جو ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہیں, ان چیزوں کو کہاں رکھا جائے, ویسٹ میں بھی نہیں نکل رہی, ویسٹ میں بھی نہیں نکل رہی, تو سیل کے اندر جو رہتی ہیں وہی میں نے فیٹ کا اوبیسٹی کا آپ کو یہ دیا کہ اس کی جو باڈی میں اوبیسٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ایکسٹرا سبسٹانس ہیں جو پرزرو کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے قدرت نے ویکیوز چھوڑے ہوئے. اسی طرح ہی اس میں ایئر ببلز ہوتے ہیں, جس میں ہوا اسپیشلی رہتی ہی ہے کہ بھائی اگر کہیں سانس لینے کی دقت آ گئی تو یہ جو ایکسٹرا ہے اس کو ہم کچھ منٹوں کے لیے, کچھ سمے کے لیے اس کا استعمال ہم کر پاتے ہیں. اسی لیے کئی بار ناک بند کر لو, منہ بند کر لو, تو کچھ سمے کے لیے ہم گزارا کر سکتے ہیں, اسی وقت ہی مرتے ہیں. نہیں نہ مرتے, اس لیے کیونکہ ہمارے اندر پرزروڈ ایئر کچھ نہ کچھ رہتی ہے, پر اس کی لمٹ کتنی ہے, 3 سے 5 منٹ کی, اتنا ہی ہوتا ہے. اور کیونکہ پھر سیلوں کا آپس میں لنک ٹوٹ جاتا ہے, ایک سیل سے اداری لینی مشکل ہو جاتی ہے, تو یہ سب سارا اس طرح کام چلتا ہے. اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ ایک اور انگ ہے جس کو ہم بولتے ہیں لائسوسومز. اب بھائی یہ پورا کچھ میں نے بتا دیا, بھائی یہ خوراک جائے گی اندر, یہ ایسے سنتھسائز ہوگی, اس سے پروٹین بنے گا جی, اس کے بعد یہ جینز کریٹ ہوں گے جی, ڈی این اے کریٹ ہوگا, آر این اے کریٹ ہوگا, یہ پرزرو کیا جائے گا, یہ کریکٹر پرزرو کر لیں گے, سب کچھ تو میں نے بتا دیا. لیکن جو خوراک آئی ہے یار, ہضم کیسے ہوگی؟ ہم کہیں کہ ہم نے روٹیاں کھا لی, اب میں نے تو آپ سب لوگوں کو بتایا ہے کہ کیسے کیسے ڈائجیشن کا سسٹم چلتا ہے, منہ سے شروع ہو جاتا ہے, منہ سے شروع ہو جاتا ہے, منہ میں سلائیوا آتا ہے جس کو ہم ٹائلن بولتے ہیں. ٹائلن کا کام کاربوہائیڈریٹ, جس طرح بھی ہم خوراک میں کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں نا, کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں, پروٹین کھاتے ہیں, فیٹ کھاتے ہیں, یہی تت ہے نا ہمارے, چاہے ساگ میں ہو, چاہے گھی میں ہو, چاہے کسی میں ہو, اصل میں جو چیز اندر جا رہی وہی پروٹین کاربوہائیڈریٹ فیٹ, یہی سب چیزیں جا رہی ہیں. اور ان سب چیزوں کو ہضم کرنے کے لیے الگ الگ پدارتھوں کی ضرورت ہے, اور وہ جو الگ الگ پدارتھ ہیں ان سب چیزوں کو پیدا کرنا, پرزرو کر کے رکھنا ایک اور انگ ڈرم ہے ہمارے پاس. یہ ڈرم کی شکل کے ہوتے ہیں, گول گول ہوتے ہیں, اور برتن ہیں سمجھ لگ کر لیں, ان میں انزائمز بھرے رہتے ہیں, انزائمز بھرے رہتے ہیں. بھوک لگی نا, پیٹ آپر کے کھا لیا زیادہ, اچھا بھائی وہ ہاضمے کی گولی لے لو, वो चूर्ण ले लो तो चूर्ण का मतलब क्या होता है, हम लोग इस लाइसोसोम को एक्साइट कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं कि भाई तेरे अंदर जितना भी एंजाइम्स भरा है वो निकालो ताकि ये जो चीज मैंने खाई है हजम हो जाए। उसको हजम करने के लिए ये तुम्हारी जरूरत है। तो लाइसोसोम क्या है, इस तरह के पैकेट हैं जिनमें एंजाइम्स भरे होते हैं और पूरे शरीर में मुंह से लेकर नीचे तक ये पूरे पूरे शरीर में इसी तरह ही है। हर एक सेल का एक पार्ट है कि जैसे मुंह में मैंने आपको बताया ना टाइलन है, तो मुंह में टाइलन जितनी भी है उसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे मुंह में जाते ही, ब्रेड खाई आपने, आलू खाया आपने, ये जाते ही यहीं से मुंह से एक हजम होनी शुरू हो जाती है क्योंकि यहां पर एंजाइम्स लाइसोसोम्स के हैं। नीचे जाएंगे स्टोमक में जाएंगे तो वहां पर HCL पैदा होगा, वहां पर पेप्सिन पैदा होगी, इसी तरह ही आगे जाएंगे तो बाइल आ रहा है। तो बहुत सी चीजें हैं जो हर एक तरह की खुराक के तत्व को हजम करने के लिए कुदरत ने एक नियम बनाया है कि इसको ये चीज हजम करेगी, इसको ये चीज हजम करेगी, इसको ये चीज हजम करेगी। वो सब चीज प्रिजर्व कहां है, वो रखेगा कहां, उसके लिए बेचारे पिसारी की दुकान में देखो ना अलग अलग खाने बने होते हैं, इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें ये है। इसी तरह ही कुदरत ने बाकी तो सारा कुछ कर दिया, न्यूक्लियस का भी काम कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया का भी कर दिया, सेंट्रोसोम का भी कर दिया, सेंट्रीओल्स के बारे में बता दिया, वह कुल खाली खाने हैं, ऑक्सीजन भरी हुई है वो भी है, वो सारा कुछ तो हो गया, फैट के ग्लोबुल्स चल रहे हैं वो भी हो गया। लेकिन ये जो लाइसोसोम है ये इस तरह है कि इसमें एंजाइम्स भरे हैं, साडा चूर्ण है हमारा, ये जो चूर्ण है ना वो चूर्ण इसी में है कि किसी चीज को हजम करने के लिए कोई चीज पदार्थ चाहिए तेज करने के लिए, तो ये लाइसोसोम्स है। तो ये लाइसोसोम्स हर एक चीज को खाने के बाद हजम करने का मतलब ये है कि उससे एनर्जी जो बॉडी को चाहिए वो निकल जाए, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो सिस्टम के तौर पर, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल से वेस्ट बाहर निकलता है, खून में जाता है, खून अलग अलग सर्कुलेट करता है, उसके मुताबिक उसका वेस्टेज निकलना शुरू हो जाता है। तो ये लाइसोसोम हमारी आखिरी बात मैं समझता हूँ आज के इस लेक्चर की है कि भाई कुदरत ने हर तरह के प्रबंध किए हुए हैं, लाइट रोशनी भी है, सामान सारा रखा हुआ है, लाइट रोशनी भी है, उससे चलेगा तो काम होगा। और ये सब चीजें जब जब ना हो, बोलते हैं ना अब मैंने खाना खाया तो यही रुका हुआ, हजम ही नहीं हुआ है, पता नहीं क्या खा, रोटी तो एक ही मैंने खाई थी, कुछ ज्यादा खाना भी नहीं खाया था, बार हजम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास लाइसोसोम्स की गिनती कम है, उसमें एंजाइम्स नहीं है, उसमें वो चूर्ण नहीं है जिससे जो आपने खाया वो हजम हो जाए। बड़ी आसानी से आपको समझ आ गई होगी कि लाइसोसोम्स का काम क्या है। इसका काम है खाई हुई खुराक को हजम करना, उस तरह के अलग अलग तरह के एंजाइम प्रोटीन खाए, अंडा खा लिया है ना तो अंडा आम रूटीन में टाइलन तो इसको हजम नहीं ना करेगी, तो इसके लिए अलग तरह की कुछ और चाहिए ना। तो सेलों के अंदर लाइसोसोम्स में वो चीज भरी होगी जो इस अंडे को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगी, फैट को अमाइलेज में कन्वर्ट करेगी। कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि अब ये खून में मिलने योग्य है, ऐसे तो नहीं मिल सकता ना, फैट सीधा घी तो हमारे खून में नहीं ना जाएगा, किसी और शक्ल में जाएगा ना, तो उसको उस शक्ल में लाने का मतलब है हाजमा। किसी भी खाई हुई रोटी को सब्जी को हाजम करने की नौबत तक ले जाना, इस तरह उसको कन्वर्ट कर देना कि अब ये खून में शामिल होने लायक है, हो सकती है, मिक्सअप हो जाए, ऐसे नहीं अलग नहीं होगा, इतना पीस दिया हमने इसको, इतना इसको रगड़ दिया है कि अब इतना सॉफ्ट हो गया कि जैसे हमारा ब्लड है। और ये काम कौन करता है, लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स की के अंदर क्या है, एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स है, इसको मशीन समझ लो, रगड़ने वाली मशीन समझ लो, या इसमें समझ लो कि किसी चीज को गोलने, असल सूरिक एसिड है तो किसी के ऊपर डाल दो तो वो गल जाएगी। हाँ जी, सो ये सब चीजें आज का प्रोग्राम, हाँ मैं समझता हूँ मेरा टाइम हो गया और ये सेल को हम खत्म करेंगे, उसके बाद फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे हम नेक्स्ट प्रोग्राम से कि अब शरीर जवान हो गया है, अब ये बेचारा इस एनवायरमेंट के हवाले से, इस खुराक के हवाले से, अपने तरीका का रहन सहन के हवाले से किस किस हालात का सामना करेगा। बच के तो आ गए हम, बड़ी मुसीबतें झेली, अब इतना बड़ा शरीर बन गया, बावजूद इसके भी हम बच गए, बच गए, लाखों करोड़ों की गिनती से बचते हुए हम बच गए, जवान भी हो गए हैं। अब इसके बाद और मुसीबतें हमारे सामने जो आएंगी, जिनको हम बीमारियां बोलेंगे, उसके बारे में वेरवा हम आगे वाले प्रोग्राम से शुरू करेंगे। मैं गुरदीप सिंह संधू, आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट, आपकी सेवा में हाजिर हूं। 9701 सेरा एन कोर्ट, डबलिन कैलिफोर्निया 94568, फोन नंबर 408-687-1899। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इन प्रोग्रामों से कुछ न कुछ नॉलेज मिल रहा होगा, जानकारी मिल रही होगी, और जानकारी भी लाहेबंदी होगी, जरूरत है आपको, और उस जरूरत को मैं पूरा करने के समर्थ हो चुका हूं, और उम्मीद ये करता हूं कि इसका फैलाव और करें, आप इतना सा योगदान जरूर करें कि इस चीज को आप और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी सुन लें। कोई फीस नहीं है इसकी, कोई इस तरह का आपका बोझ नहीं है आपके ऊपर, सिर्फ आपको बताना ही है कि और लोग भी सुन लें। इतनी हमदर्दी आप उनसे करें, मेरे से तो नहीं, उनसे हमदर्दी करें ताकि वो भी सुन लें और उनकी भी जानकारी में वादा हो, हम उनकी भी सेहत अच्छी रह सके, अपनी सेहत का बचाव कर सके। आप सबका रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूं। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। परसों फिर मिलते हैं श्रोतियों, सुनते रहा करो प्रोग्राम, बहुत इंपोर्टेंट डॉक्टर साहब का प्रोग्राम हुंदा, और अपने साथियों दोस्तों भैन भाई घर के ला के फोन उच्ची आवाज के सारा परिवार बह के सुन सकते हो, और ए बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, मिलते हैं जी फिर, थैंक यू
0: जी, सत श्री अकाल।
1: थैंक यू, सत श्री अकाल।

0: ये बर्बादी का रास्ता है शबनम।
1: लेकिन बात हसीन है अम्मी,
0: इसकी मंजिल तुम्हारी मौत हो सकती है।
1: खुदा करे ऐसी मौत जिससे जिंदगी मिले सर आंखों पर।
0: मगर तुम्हें इस रास्ते पर जाने कौन देगा?
1: मुझे इस रास्ते पर जाने से रोकेगा कौन?
0: मैं रोकूंगी, मैं, अमीना बाई।
1: अमीना बाई, तुम तो इंसान हो, अब खुदा भी मुझे नहीं
2: नालायक बदमाश, इज्जत के लिए मैंने तुझे पाला है, मैं तुझे जान से मार डालूंगी, जान
1: डालो। वरना कहीं ऐसा ना हो मेरी मोहब्बत के रास्ते में आने वालों की जिंदगी मैं ले लूं।

لا دو थैंक यू सो मच सारे श्रोतियों का धन्यवाद प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं जी फिर परसों फिर मिलांगे तो सुनते रहो प्रवास रेडियो 24 आवर तुहाडे नाल हमेशा चलता है जी जो मर्जी ला लो ऑन हुंदा थैंक यू सो मच

0: लो दोस्तों अगला गीत सुनते हैं जी, मलकी कीमा। क्या बात है, बहुत फेमस सॉन्ग सी उस टाइम दे विच, बहुत ज्यादा इनू लोगों ने सुनिया। और आप मलकी कीमा थोड़े नाल पेश कर दे जी, मोहम्मद सदीक साहब ते रंजीत कौर।
1: कीमा रांझे दा भतीजा, गढ़ मुगलाने दे सरदार राय मुबारक दी लड़की मलकी दे नाल व्याया गया। निक्या निक्या दा व्याह हो गया, जवानी आई ता दोहां दे हुसन जवानी दी चर्चा गली गली महल्ले महल्ले घर घर होण लगी। मलकी दियां सहेलियां मलकी नूं आखदियां, अड़िए मलकीए तेरा कीमा असीं कोरियां ते बैठा वेख्या सी, बड़ा सोहणा सी, आहा हुण तां गभरू होके होर भी सोहणा लगदा होणा। ओधर बचोलन कीमे नूं आख्या करे, अड़िया कीमिया तेरी मलकी हजारां नहीं बल्कि लखां च इक है, वेंदियां सार इंसान तां की परिंदे वी काका के पैंदे। एक दूजे दे हुसन दी तरीफ सुन दे, एक दूजे उते आशक हो गए, सबबी मेले हुंदे ने। एक बारी कीमा गढ़ मुगलाने नूं जा रहा, रास्ते दे विच एक खूह दे उते कुछ कुड़ियां पानी भरदियां ने, उन्हां विच मलकी वी सी। मलकी दा हुसन वेख के कीमा खूह ते गया पानी मंगदा उन्हां कुड़ियां तों, तां उन्हां कुड़ियां दी सरदार ओह हुसन दी मलका मलकी नूं तोड़ के जवाब दिंदी है। जरा गौर नाल सुनना की जवाब दिंदी है।

चमरो तो आई ओ चिट्ठी पकड़ ध्यान से इनकी सेवित पाई महाराज निशासन कर दिया चिट्ठी दिखलाई के नलुआ जंग दूजदा कर दिया चढ़ाई।

0: वाह माली जी, जिस तरह मैं
1: पहला
0: शायद क्या ही तुम वाहवा रियाज करके आए हो, पहला नालों तुहाडी आवाज होर परफेक्ट हुई है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी, तुहाडा कन्न बड़े स्रोत सुन वालियां दे बहुत ही मिठे आ और सुनदे आ, मैं सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद करदा जेडे मेनू इना हौसला दिंदे आ। तुहाडे हौसले नाल ही फिर बंदा होर अगे उडारी मारन की कोशिश करदा, जिदा प्रवास ना ही रेडियो दा आ ते इह तां बड़ा ही इस गल दा मेरे लिए एक की कहंदे आ निशाना आ, मेरे लिए एक बहुत वधिया और मेनू सेध देण वाला सारिया तो वधिया रेडियो दा। अगर मैं सुनदा बहुत ध्यान दा रेडियो जाना भी कहीं ते कई वारी, पर जो कुछ तुहाडा सुनेहा आ जनता नूं जांदा ओह मैं कदे आम दूजे तो नहीं देखिया। बहुत वधिया सारे प्रोग्राम करदे आ, किसे दी मैं दूजा नहीं करदा, पर तुहाडी सिफत जिहड़ी बनदी आ ओ मेरा दिल रुकदा नहीं, गल जवान आउंदी आ ओ कहनी मेरा फर्ज भी बनदा और मैं कहंदा भी आ। बहुत वधिया बहुत वधिया सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद जिहड़े इत्थे आउंदे आ ते जिन्ने भी स्रोते आ। सॉरी मैं किन्ने चिर तो नहीं अटेंड कर सकया,
0: कोई नहीं तुसी बिजी सी, कोई गल नहीं कोई नहीं, हुण तुसी कोल आ गए हो साडे, हां जी हुण रौनकां लाया करांगे हर वीक ते
1: ठीक है जी। हां जी मेरे वल्लों फिर सारिया नूं बहुत बहुत
0: थैंक यू। मैं ना तुहाडे नाल दो चार लाइनां करांगा के नेरा होए जमाने विच नेर पै जाए,
1: वाह वाह,
0: पर रात दी रानी दे नेरे विच फुल खिल दे,
1: वाह वाह वाह क्या बात है, सही
0: गल, रात दी रानी दे नेरे विच फुल खिल दे, प्यार भी होणिया लई चढ़ जे दिन जांदा ते विच नेरे दे यारां नूं यार मिल दे,
1: वाह वाह वाह क्या बात मारी,
0: प्यार भी होणिया लई चढ़ जे दिन जांदा ते विच नेरे दे यारां नूं यार मिलदे, चोरां यारां लई आ बहार जांदी ते डिस्को पबां विच दिलां नूं दिल मिलदे,
1: वाह क्या बात है,
0: यार दी शो बदन दी खुशबू रूह विच लो, भाई नेरिया तेरा क्या कहना, सानू नेरे चो स्वर्ग दा राह दिसदा, ऐसा दिन दे चानण तो की लेना,
1: वाह जी वाह क्या बात,
0: सानू नेरे चो स्वर्ग दा राह दिसदा, ऐसा दिन दे चानण तो की लेना,
1: की लेना क्या बात है, क्या बात
0: जी, बहुत बहुत मेहरबानी साडिया शुभकामनावां तुहाडे नाल तुहाडे परिवार नाल सारे नाल,
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी, मेरे वालों सारे
0: हिस्सा लिया, सोहनी गलबात सानू अपना गाना सुनाया ते साडियां शुभ शावां एक बारी फिर तुहाडे नाल ते इहो ही मुलाकात हुंदी रहा करेगी साडी।
1: ओके जी थैंक यू जी बहुत बहुत धन्यवाद, अंके चंद जी जर्मन दी भाषा जी, ओके
0: ओके बाय
1: बाय।
0: दोस्तों ए सी साडा अज दा प्रोग्राम ते अज मेरी कोई सेहत भी ठीक नहीं सी इन्नी, पर मैं जोर ला के ही अपना प्रोग्राम कर रहा, मैं चक्कर आ रहे ने, दो दो घड़िया नजर आ रही ही सामने टाइम दे सामने ते मैनू समझ नहीं आती, मैं खब्बी घड़ी तो टाइम वेखा के सज्जी तो वेख फिर एनी हो तुहाडे प्यार दे नाल हौसला मिलिया, गल्लां चो गल्लां लभदिया होया टाइम निकल देगा दो घंटे का पता नहीं लगा, ते अगले वीकेंड ते फिर छाल मार के हाजिर होवांगे जी सैटरडे संडे, ताडा साथ इदा ही चलेगा ते मौजां ही लगियां रहणगियां ते असीं भी सेहतमंद महसूस करदे रहांगे। देशां विदेशां च सुन रहे सारे सज्जणां मेरे तरफों प्यार भरी सत श्री अकाल, आल सलाम अलैकुम नमस्कार एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग all the lovely and sweet people of this planet.